दूसरी चीज इस अंग का गुमशाद उपाय कि तुर्की न सिर्फ ये सिस्टम तैयार करता है बल्कि बगैर पायलट सिस्टम के खतरात के खिलाफ इंतहा जदीद हल भी तैयार करता है। ये अनिया है कि अंकरण इस मामले को महज ड्रोन्स की पैदावार करने की निगाह से नहीं देखा। तुर्की इस पहले तक कैसे पहुँचाओ जरिए आपकी इकदाम इसे दूसरे मल से किस तरह मुनफरद बनाते हैं। हम सवाल का जवाब DRT न्यूज के लिए दिफाई सनत के माहिर कोजान सेल्चुक एरकान के जायजों में तलाश करने की कोशिश करेंगे। एरकान के मुताबिक तुर्की बेदारी के एहसास से गुजरा है। इस एहसास के मरकजी मामला शामिल है मुल्क की कौमी सतह पर किसी निजाम को तैयार करने का अहल बनना सिर्फ फख्र की बात नहीं बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक तकाजा भी है क्योंकि अमनी मैदान से हासिल होने वाली हर फीडबैक हॉटस्पॉट पर हर मुशाहदा आपको अपनी मसनूआत को मजीद कामयाब बनाने का मौका फराहम करता है। जब आप गैर मुल्की ज़राए पर इंसार करते हैं तो आप इस साइकिल को कायम नहीं कर सकते। एरकान के अल्फाज दो टोक हैं।

जरे आप मौजू पर जाने से कब एरकान ने ट्रॉन सिस्टम्स पर भी एक अहम नुक्ते को बयान किया है। एरकान के मुताबिक फील एक्सपो के दौरान इस शोबे में 3 माहदे तय करना मुस्तकबिल के लिए एक कवी इशारा है। अब आइए शायद सबसे अहम नुक्ते की तरफ आते हैं, वो है शायद ज़ेली अनासर। एरकान ने नुक्ता पेश किया है, ज़रे आब निज़ाम जो हमने पहले मॉडल या प्रोटोटाइप के तौर पर देखे थे अब अपनी शक्ल हासिल कर चुके हैं। वो सिर्फ माने पर पैदावार शुरू हो चुकी है, मुतलका कोतों के साथ मुआहदे तय पा गए हैं, लेकिन हैजान अंगेज मामला इस हद तक महदूद नहीं। इसने बाप में बुलंद मकामी पैदावारी शराखत दर्जहर तंगेज एरकान इसकी वजाहत यूं की है, ज़रियाब की एक मुख्तलिफ दुनिया है जो कि अभी तक पूरी तरह दरियाफ्त नहीं हुई। यहाँ कुछ पैदा करने के काबिल होना इंतहाई कीमती है। मिनी आपदों से गहरे पानी में कम विकास मिशन अंजाम देने वाले प्लेटफॉर्म ज़रे आप हमला करने की सलाहितों की इंतहाई बुलंदी तक ले जाने वाला निज़ाम हमारे मुंतजर हैं, तो मकामी मवाद का तनासब इतना अहम क्यों है? एरकान ने इस हवाले से यूक्रेन की मिसाल दी है। यूक्रेन भी बहुत ज्यादा तादाद में ड्रोन सिस्टम तैयार करने की सलाहियत रखता है, तहम इस पैदावार में ज़ेली निज़ाम तकरीबन मुकम्मल तौर पर गैर मुल्की ज़राए पर मुनहसर है। इसमें यूरोप, अमेरिका और चीन से आने वाले अहम अज्जा शामिल हैं। सप्लाई चेन में मामूली सा खलल भी पैदावारी सलाहियत को मादूम कर सकता है। तुर्किया इस हकीकत को पाम चुका है कि गुज़िश्ता चंद सालों में इसने इन सब सिस्टम्स की मकामी पैदावार पर तवज्जो मरकूज की है। सा एक्सपो ने इस काम के सम्राट हमारी आंखों के सामने रखे हैं। एरकान के आखिरी अल्फाज एक तशखीस पेशीन गोई दोनों खसूसियात के हामिल हैं। दिन के अख्ताम पर अगर हम अपने रोड मैप को सही तरीके से जारी रख सकते हैं तो हम एक ऐसा दौर शुरू कर सकते हैं जिसमें सिरे आप सिस्टम्स की तैयारी में हमारा नाम अक्सर लिया जाएगा। तुर्किया वैस

0: फरीकों के लिए काबिल कबूल मुआहदे की खातर रोड मैप की ज़रूरत का ख्याल ज़ाहर किए जाने के बाद जारी किया गया है। बयान में पेस्कोफ ने वाज़ेह किया है कि मास्को इस हल की तफसीलात को अवामी तौर पर जाहिर नहीं करेगा और यह कि रूस वाशिंगटन के साथ पसे पर्दा राबता बरकरार रखे हुए है। अमरीका और रूस के सदूर के दरमियान टेलीफोनिक मुलाकात के बाद जारी किए गए इस बयान में पेस्कोफ ने उम्मीद जाहिर की है कि अमन मुज़ाकरात मुस्तकबिल करीब में दोबारा शुरू हो जाएंगे।
1: अमरीकी नशराती इदारे CBS न्यूज़ ने 8 और 9 सितंबर के दरमियानी शब उर्दन में अमरीका के मवफक सालती एयरवेज पर ईरान के हमले की तफसीलात शेयर की हैं। ज़राए ने दावा किया है कि इस हमले में अमरीका के तकरीबन 8 F-15 जंगी तैयारों को नुकसान पहुँचा। तहम उन्होंने वाजह किया कि यह नुकसान मामूली नौयत का था और तैयारों को दोबारा परवाज़ के लिए तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा ज़राए ने बताया कि वार्थॉक के नाम से मारूफ एक A-10 थंडरबोल्ट हमलावर तैयारे का पर भी टूट गया। तहम उन्होंने बताया कि इस वाक़े में कोई भी अमरीकी फ़ौजी हलाक नहीं हुआ। ये वाक़ा उस वक्त पेश आया जब अमरीका ने मंगल के रोज़ ईरान की जानब से एक अमरीकी बहरी तनसीब को निशाना बनाने के जवाब में ईरान के 5 टैंकरों को तबाह करने का ऐलान किया था। ईरान की पासदारा ने इनकलाब ने बाद में रिपोर्ट दी कि उन्होंने 8 टैंकरों 2 जंगी जहाज़ों और उर्दन में अमरीकी बेस पर हमले किए हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उर्दन में मौजूद अमरीकी अफवाज ने ईरानी हमलों के खिलाफ दिफा के लिए 30 से ज्यादा पैट्रियाट मिज़ाइल दागे। ये हमले ऐसे वक्त में हुए जब अमरीकी हुकाम ने पैट्रियट मिज़ाइलों के तेज़ी से कम होते हुए ज़खायर और दीगर हसास गाइडेड गोला बारूद के स्टॉक में कमी पर गहरी तशवीश का इजहार किया था।
0: इंडोनेशिया के सूबे बांतिन के सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिस के सरबरा अल अमरत ने अपने एक बयान में कहा है कि एक तेज़ रफ्तार कश्ती जिसमें 5 फोटो सहाफ़ी अमले के 2 अरकान और 1 गाइड सवार थे उनसे रब्ता मुनक़ते हो गया है। अल अमरत ने बताया है कि सहाफ़ियों में से एक ने अपने करीबी रिश्तेदारों को भेजे गए एक पैगाम में कहा था कि वो अनाक कराकाताओ के आसपास के पानियों में पहुंच चुके हैं और उन्होंने वाज़ेह किया कि यह इस टीम की तरफ से मौसूल होने वाला आखिरी पैगाम था। अल अमरत ने कहा है कि इलाके में मौजूद सर्च एंड रेस्क्यू टीमें अभी तक इस ग्रुप से रब्ता कायम करने और इनके मुकाम का पता लगाने में नाकाम रही हैं। जिन लोगों से रब्ता नहीं हो पा रहा इनमें अनातोलिया एजेंसी के एक फ्रीलांस कैमरामैन के तौर पर काम करने वाले फिरदोस वाजदी समेत इंडोनेशिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी अंतारा मीर्दिका और आई न्यूज़ एजेंसियों के मुलाजमीन शामिल हैं। इंडोनेशिया के आतिशफशां अनाक कराकाताओ में 6 सितंबर को धमाका हुआ था जिसके नतीजे में निकलने वाली राख जावा के इलाके में 6,000 मीटर और समाट्रा के इलाके में 15,000 मीटर की बुलंदी तक पहुंच गई थी। धमाके के बाद आतिशफशां की राख मुल्क के मगरबी हिस्सों में फैलने की वजह से दारुलहुकूमत जकार्ता के सोईकारनो हाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजें मनसूख कर दी गई थीं। धमाके के बाद मुल्क भर में 2,300 से ज्यादा मुकामी और बैनुल अक्वामी परवाजें मनसूख की गईं जबकि 7 एयरपोर्टों पर लगभग 3,40,000 मुसाफिर फंस कर रह गए हैं।
2: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: बैन अलाक़वामी इदारा बराए उमूर महाजरत IOM ने कहा है कि बढ़ते हुए तशद्दुद ने एक ही हफ्ते में 4,500 सूडानी बाशिंदों को नकल मकानी पर मजबूर कर दिया है। IOM ने सलामती की बिगड़ती हुई सूरतेहाल से खबरदार करते हुए कहा है कि सूडान के शुमाली सूबों दारफोर और ब्लू नाइल में 4,500 से ज्यादा अफराद अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। शुमाली दारफोर में 3 और 6 सितंबर के दरमियान तकरीबन 1,275 लोग अपना घर बार छोड़कर भाग गए हैं और कुछ ने हमसाया मुल्क चाड में पनाह ले ली है। ब्लू नाइल में एक ही दिन में मुख्तलिफ देहातों से तकरीबन 3,315 अफराद बेघर हो गए हैं। इदारे ने सूरतहाल को कशीदा और इंतहाई गैर मुस्तहकम करार दिया है। वाज़ह रहे कि सूडान में अप्रैल 2023 में खाना जंगी शुरू होने के बाद से अब तक हजारों अफराद हलाक और 13 मिलियन बेघर हो चुके हैं।
0: फिलिपाइन के कोस्ट गार्ड के दिए गए बयान के मुताबिक बुध की रात मगरबी फिलिपाइन में जजीरा पालावान के करीब एक मुसाफिर परदार बहरी जहाज में आग लगने के नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं जबकि 80 से ज्यादा लापता हैं। कोस्ट गार्ड ने बताया है कि पालावान के इलाके कोरोन के करीब MV जोनेस्टर नामी जहाज में आग लगने के बाद 43 अफराद को बचा लिया गया है। कोस्ट गार्ड की जानब से जारी करदा तस्वीर और वीडियो मनाजर में देखा जा सकता है कि शोलों ने जहाज के कुछ हिस्सों को लपेट में ले रखा है और इमदादी टीमें लाशों को बॉडी बैग्स में मुंतकिल कर रही हैं। कोस्ट गार्ड के तर्जुमान कोमोडोर नोमी कियाबियाब ने DZXL रेडियो को इंटरव्यू देते हुए बताया है कि जहाज के रिकॉर्ड के मुताबिक इस पर 117 मुसाफिर और अमले के 17 अरकान सवार थे। कियाबियाब ने बताया है कि 80 से ज्यादा अफराद लापता हैं जबकि उन्होंने

0: वासी की है कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहने के बायस इस तादाद में तब्दीली आ सकती है। एहलकार ने कहा है कि ये फेरी मनीला के इलाके बासिको से रवाना हुई थी और कोरोन की तरफ आजमे सफर थी। आग लगने की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात जारी हैं।
1: तुर्क सदर के शोबा सरमायाकारी और माली उमूर की मेज़बानी और वजारत सनअती और टेक्नोलॉजी की स्ट्रेटजिक शराकत दारी के साथ मुनक़िद होने वाला आलमी टेक्नोलॉजी नुमाइश GTEX पहली बार इस्तांबुल में शुरू हो गई है। इस तकरीब के दायरे कार में 70 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारी हजरात, सरमायाकार और टेक्नोलॉजी के शोबे के रहनुमा एक जगह जमा हुए हैं। तकरीब के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू करते हुए सदारती इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस ऑफिस के शोबा ताल्लुकात आमा के सरबरा गोखान युजल ने इस बात पर जोर दिया कि मसनू जहानत की तब्दीली के सफर में तुर्की एक मजबूत पोजीशन का हामिल है। उन्होंने कहा कि तुर्की महज एक पुल नहीं है बल्कि दुनिया को आपस में जोड़ने वाला एक स्ट्रेटजिक नुक्ता इत्तिसाल भी है। गोखान युजे ने मजीद कहा कि अपनी मजबूत सनअती सलाहियतों, अहल व हुनरमंद नौजवान आबादी और 1000 से ज्यादा मसनू जहानत की कंपनियों के साथ तुर्की अपने टेक्नोलॉजी के अहदाफ को आलमी इकतसादी कदर में तब्दील करने के लिए मुकम्मल आजम रखता है।
0: रवा साल का माह अगस्त दुनिया भर में रिकॉर्ड में आने वाले अब तक के रिकॉर्ड का गर्म तरीन महीना रहा है। यूरोपीय यूनियन के महकमा मौसमियात कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने जुमेरात को जारी करदा बयान में अगस्त के महीने को दुनिया भर में अब तक का गर्म तरीन महीना करार दिया है। इस महीने में मगरबी यूरोप ने अपनी तारीख का गर्म तरीन मौसम में गर्मा देखा और बहरी दर्जा हरारत भी बेमिसाल सतह तक पहुंच गया। महकमे के जारी करदा जायजे के जवाब में अकवाम मुत्तहदा ने खबरदार किया है कि जब तक इंसानियत फोसिल ईंधन को तर्क नहीं करती, कुर्राए अर्ज़ी ऐसे हालात की जानब बढ़ता रहेगा जो इससे पहले कभी देखने में नहीं आए। अगरचे कोपरनिकस के मुशाहिदात 1940 तक जाते हैं, लेकिन बर्फ के मरकजे, दरख्तों के हल्के और मरजानी ढांचे ऐसे शवाहिद हैं जो साइंसदानों को मौजूदा आबोहवा का जायजा कहीं ज्यादा तवील तारीखी तनाजुर में लेने के काबिल बनाते हैं। कोपरनिकस के निगरान इदारे यूरोपी सेंटर बराए दरमियानी मुद्दत की मौसमियाती पेशीन गोयां ECMWF से समांथा बर्चिस ने AFP के लिए जारी करदा बयान में कहा है कि मुमकिन तौर पर गुज़श्ता कम अज़ कम 1,00,000 साल से इंसानियत ने आज जितने बुलंद दर्जा हरारत का मुशाहिदा नहीं किया।
1: और सामिन, एप्पल ने अपना पहला फोल्ड एप्पल फोन डू मुतारिफ करवा दिया है। अपने पहले फोल्डेबल आईफोन मॉडल आईफोन डू की नकाब कुशाई के मौके पर जारी करदा बयान में एप्पल ने कहा है कि यह फ़ोन बहुत मुनफरिद है और अब तक की हमारी कोई चीज़ इससे नहीं मिलती। फ़ोन खोलने पर डिवाइस 7.6 इंच की एक बड़ी स्क्रीन जाहिर करती है जो कि आईफोन 18 प्रो मैक्स से 50% बड़ी है। स्क्रीन के चारों तरफ एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम फ्रेम है। फ़ोन के कैमरे सिफर शटर वक्फे के साथ 48 मेगापिक्सल फ्यूजन कैमरे और 120 फ्रेम/सेकेंड पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की खसूसियात रखते हैं। जदीद तरीन सेरामिक शील्ड तहफ़ की बदौलत ये आला पानी और धूल के खिलाफ भी पायदार है। आईफोन ड्यू की इब्तदाई कीमत $2,000 है और उसकी अव्वलीन तलब दरख्वास्तें 16 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही सदाया तुर्की से उर्दू में खबरें ख़त्म हुईं।